ग्रंथान शुतानता मनुष्यमत प्रसादेन भविष्यति न संशयः मंत्रार्था शक्ला संतु पूर्णा शक्त पूर्णता तत्त्वान् बुद्ध

रास्ता सुजनों भवन को काले वृषभ वर्जिन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशो यूं शोभरिधा ब्राह्मणा संतुलप्रिया